तक तक तक तक तक तक तक तरे हो यतिका दिन गयो बसेर के भयो काम गर्ने दिन सबै भाइ हिँड ह ह ह ह ह हो रा

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: टाइम चेक
2: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज

नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ।

0: ओहो आज डाई हो नै मजा लागत हो मजासे दवाई करे ना कहटो
1: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाई न पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
0: ए बात तो ठीक कहलो साची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त
1: वहां त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर परविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाए छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाए
0: ए ओसिनो कल से वहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
1: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
2: दाई धेरै समयदेखि महिनावारी गडबडी सेतो पानी बग्ने र पेट दुख्ने समस्याले साह्रै दुःख पाएकी छु कहाँ जाँदा राम्रो होला
3: म पनि पहिला ग्यास्ट्रिक पाइल्स र पेटको समस्याले धेरै हैरान थिएँ पछि नेपालगञ्जको मेडिकेयर क्लिनिक गएँ त्यहाँ महिला र पुरुष दुवैका समस्याको उपचार र अपरेसन एउटै ठाउँमा हुने रहेछ अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा पाएपछि अहिले मलाई धेरै आराम भएको छ
2: हो र त्यहाँ के सेवा पाइन्छ त दाई
3: सुन त्यहाँ महिलाहरूका लागि बाँझोपन सेतो पानी महिनावारी गडबडी गर्भवती जाँच पाठेघर तथा स्तन सम्बन्धी समस्याको उपचार पाइन्छ र पुरुष तथा अन्य बिरामीहरूका लागि ग्यास्ट्रिक पाइल्स हर्निया एपेन्डिक्स थाइराइड पित्त थैली गाँठागुठी तथा विभिन्न ल्याप्रोस्कोपिक र लेजर सर्जरी सेवा पनि उपलब्ध छ नि
2: हजुर मेडिकेयर क्लिनिकमा वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक दूरबीन तथा लेजर सर्जन डाक्टर कमर हसन अन्सारी र वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक स्त्री तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमिरुन निशाले सेवा दिइरहनु भएको छ तपाईँ पनि आजै कुनै पनि चेक जाँच र अपरेसनका लागि नाम दर्ता गरेर ढुक्क बन्नुहोस्
3: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बिपी चोक नजिक उपमहानगरपालिकाको कार्यालय लाइनमा सम्पर्क नम्बर 97-639-11-786 र 98-224-92-377
4: मेडिकेयर क्लिनिक महिला र पुरुष दुवैको स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो गन्तव्य
0: खुशीके खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
1: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा
0: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेसर मुटु रोग पेट छाती कलेजो सम्बन्धी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे ओ और सक्कु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महिनाक अंतिम शुक्रवार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर ओ थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
1: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महिनाक अंतिम शनिवार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँचमा 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-239-80-665 वो 98-482-80-465

0: रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनुहोस्।
1: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, वाशिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि। घर रंगाओ, खुशी बढाओ, उपहार जित्ने अवसर पाओ।
0: बर्जर पेन्स।
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840213780।
4: ओहो, आज डाइह नै मजा लागत हो। मजा से दवाई करेला कहटु।
5: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन। पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
4: ए बात तो ठीक कहलो, साच्ची की अस्पताल में का सुविधा मिलत?
5: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो। सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाइत।
4: ए ओसिनो कला से वहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह।
5: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081535717। कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
4: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ लैजिदा हो?
5: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन। वहाँ त अनुभवी चिकित्सक वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुइत। ओतरकेल कहाँ हो? वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ति रहना, जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान खजोइना, कान कम सुन्ना, कान दम्मा हुइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुईट। वाकर संगे कान कम सुन्ना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मेसिन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाएत। जस्ते BTE, CIC, RIC जैसिन मेसिन फे वहाँ मिलत।
4: ए ओसिड हो कला से बुडु हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता।
5: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके। संचालक पूरण चौधरी। सम्पर्क नम्बर 9884206697, 9858236697 ओ 9804486697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
4: खुशी के खबर, खुशी के खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा डेटी आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा डेटी आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ध्यार सेवा डेटी रलेक जानकारी कराइटी
5: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार परसुटी व स्थिति रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क हो मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाँटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आइल बा
4: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेसर मुटु रोग पेट छाती कलेजो सम्बन्धी सक्कु उपचार पैथोलॉजी ल्याब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सक्कु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनाक अंतिम शुक्रवार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराइदी
5: नोट ई अस्पताल कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महीनाक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज संपर्क नंबर 081536465 98249806665 ओ 98482804665।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा हो रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घूमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे एफएम से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गंगा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे कि राव मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार। कार्यक्रम चना जोर गरम सुनने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो श्रोताई, प्यारा से कार्यक्रम जो आप लोग सुना जाता है आप के प्रिय रेडियो किसी सारे एफएम 94 मेगाहर्ट्ज़ से जो चला था 1 बजे से 3 बजे तक ये कार्यक्रम रही जी माँ आप लोगन के यहाँ। अच्छा अच्छा क्वेश्चन और रखा जाए प्रश्न सवाल तो का जवाब दिया जाए सही दे वाले साथी के यहाँ उत्तर जो पुरस्कार भी मिली तो इसे सुने कैसी 4-15 से बैस के लाइन में आ जाए। ये कार्यक्रम जो सुना जाता है अपने बाकी जिला नेपालगंज बारा बिलासपुर से जो ये प्रसार होते कार्यक्रम किसी सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज़ से तो 1 बजे से 3 बजे तक रही कार्यक्रम में। यहाँ आप लोगों का प्यारा प्यारा कव्वाली ना तो गहरा सब ना सुने मिली तो आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 4-15-122 के लाइन नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-4-15-122 के लाइन में हमारे देश विदेश पड़ोस भारत के सब साथी लोग आवाजी। और अगर आप लोगों का अपने मन पसंद के कव्वाली सुने का है तो मैं इसी में लिख के पठवा जाए। तो साथी आज के क्वेश्चन है जो आप लोग एकदम ध्यान से सुना जाए। पहला नंबर में है आप लोग एकदम ध्यान से सुना जाए। उस राजा की अनोखी रानी दुमके रास्ते पीती पानी। हाँ एक नंबर में है उस राजा की अनोखी रानी दुमके रास्ते पीती पानी। हाँ इसके उत्तर का हो इसे दो नंबर में है लालटेन पंखे में उड़े अंधेरी रात में जलती बाती बिना तेल के जाड़ा हो या बरसात में। हाँ तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जी। उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार दिया जी। पुरस्कार कहाँ से दिया जी आप लोग भी जाना जाते हैं आपके माना जाना हुआ ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 में है जहाँ से आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जाए जहाँ हर मेर के कपड़ा लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब मेर के कपड़ा कुशल कारीगर द्वारा सियाँ बनाया जाता है वहाँ से पुरस्कार दिया जाए। तो साथ ही आप लोग नंबर में जुड़ा जाए और नंबर में जुड़ के आप लोग एकदम कार्यक्रम के जो क्वेश्चन है उसका उत्तर दिया जाए। उत्तर दे के आप विजेता बना जाए। विजेता बन के आपके एकदम नाम रोशन रही कि हमरे फलाने गांव से फलाना आदमी आज विजेता भाई हमरे या कोई हमरे माँ बहने जो दिमाग उन्हों के बहुत ज़्यादा है जो जीती हैं तो उनके भी नाम आए जी। तो आप लोग भी सब कोई माँ सब के लिए कार्यक्रम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थारू पहाड़ी सब लोगों के लिए कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो रेडियो किसी सारे एफएम से चला था। तो साथ ही आप लोग नंबर में जुड़ा जाए। तो बोले अब हम चले थे पहले सुना जाए प्यारा से कव्वाली है वो छोटा सा व्यापारी विज्ञापन उसके बाद माँ सुना जी प्यारा से कव्वाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊँगा खाली।
1: दाई धेरै समयदेखि महिनावारी गडबडी सेतो पानी बग्ने र पेट दुख्ने समस्याले साह्रै दुःख पाएकी छु। कहाँ जाँदा राम्रो होला?
2: म पनि पहिला ग्यास्ट्रिक पाइल्स र पेटको समस्याले धेरै हैरान थिएँ। पछि नेपालगञ्जको मेडिकेयर क्लिनिक गएँ। त्यहाँ महिला र पुरुष दुवैका समस्याको उपचार र अपरेसन एउटै ठाउँमा हुने रहेछ। अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा पाएपछि अहिले मलाई धेरै आराम भएको छ।
1: हो र त्यहाँ के सेवा पाइन्छ त दाई?
2: सुन त्यहाँ महिलाहरूका लागि बाँझोपन सेतो पानी महिनावारी गडबडी गर्भवती जाँच पाठेघर तथा स्तन सम्बन्धी समस्याको उपचार पाइन्छ र पुरुष तथा अन्य बिरामीहरूका लागि ग्यास्ट्रिक पाइल्स हर्निया एपेन्डिक्स थाइराइड पित्त थैली गाँठा गुठी तथा विभिन्न ल्याप्रोस्कोपिक र लेजर सर्जरी सेवा पनि उपलब्ध छ नि।
1: हजुर मेडिकेयर क्लिनिकमा वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक दूरबीन तथा लेजर सर्जन डाक्टर कमर हसन अन्सारी र वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक स्त्री तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमिरुन निशाले सेवा दिइरहनु भएको छ। तपाईँ पनि आजै कुनै पनि चेक जाँच र अपरेसनका लागि नाम दर्ता गरेर ढुक्क बन्नुहोस्।
2: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बिपी चोक नजिक उपमहानगरपालिकाको कार्यालय लाइनमा। सम्पर्क नम्बर 97-6-39-11-786 र 98-2-24-92-377।
3: मेडिकेयर क्लिनिक महिला र पुरुष दुवैको स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो गन्तव्य।
4: नमस्ते दाई।
5: नमस्ते नमस्ते, धेरै दिनपछि देख्यौ त भाई।
4: विदेश जान आटेको दाई, प्रोसेस गर्दै थिए। अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको।
5: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त। अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि।
6: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान।
7: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस्। ग्यारेन्टीको साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
1: हाम्रा विशेषताहरू:
7: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
1: प्रत्येक दिन पेट, छाती, मुटु तथा सुगर, थाइराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपिडी सेवा।
7: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान, बाझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा।
1: प्रत्येक महिनाको तेस्रो बुधबार सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
7: प्रत्येक महिना हार्दिक आइबीएफ काठमाडौँका निसन्तान, बाझोपन, महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्येबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
1: अत्याधुनिक प्रयोगशाला, इको कार्डियोग्राम, इको ईसीजी, डिजिटल एक्सरे सेवा।
7: अत्याधुनिक एआई प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा।
1: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40%देखि 50%सम्म विशेष छुट सेवा।
7: प्रबन्ध निर्देशक एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिमपट्टि, एनआईसी एसिया ब्याङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला, कारकान्तो चोक, नेपालगञ्ज।
1: सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-274 र 98-580-21-822।
8: समय बदलियो, पुस्ता फेरियो, तर साथ साथ उस्तै छ।

0: हाँ तो श्रोता ये प्यारा से कवाली सुनागा आप लोगन का अच्छा लाग है, तो साथ ही आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुना के 84-15-122 के लाइन में आ जाए। कार्यक्रम जो आप लोग सुना जाता है आप के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 MHz से चलत है। कार्यक्रम के प्रयोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी, ज्योति टेलर जो सदा लाइन में है वहाँ से आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। तो साथी ऐसे सुने के 84-15-122 के लिए नेपाल के साथी के लिए है, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में आवा जी। पहला नंबर में है उस राजा की अनोखी रानी, उस राजा की अनोखी रानी दुमके रस्ते पीती पानी एक नंबर में है। दो नंबर में का है लालटेन पंखे में, लालटेन पंखे में उड़े अंधेरी रात में जलती जलती आंधी, जलती बाती बिन तेल के आंधी जाड़ा हो या बरसात में। हाँ तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जाए। हाँ तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुने के 84-15-122 के लाइन में आवा जाए। ऐसे आप लोगों के मैसेज भी हमारे हाथ में है, मैसेज भेजने हैं ऐसे संगम टेलर से मैसेज भेजने कृष्णा परियार जी लिखने। सबसे पहले मियाँ जी नमस्कार, तो नमस्कार है कहने कोई प्यारा से कवाली सुना दिया जी। कवाली सुनने वाले हमारे तमाम साथी हैं जैसे सुभाष हैं, मोहम्मद अफरोज खान हैं और जो संगम टेलर के जितने कार्यकर्ता हैं सब लोगन का और जितने साथी भाई हैं सब लोगन का हमका कृष्णा कहके चिन्हे जाने वाले सब लोगन का सुनाओ चाहते हैं। ऐसे आप लोग नंबर में भी आवा जी सुने के 84-15-122 के लाइन में आओ जी। कार्यक्रम आप ही प्रिय रेडियो कृष्ण सारे FM 94 MHz से चला था, 1 बजे से 3 बजे तक रही। आज के दिन में कवाली नात वगैरह आप सुन सका जाते हैं। फोन में अपन क्वेश्चन बतावा जाए, मैसेज में लिख के पठवा जाए कि हमका ये कवाली नाच चाहिए तो के छुटकरी में नाम पता ठिकाना लिख के पठवा जाए तो हम लोग आपके जरूर पढ़ा जाए। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजने जैसे शिवानी ग्रिल उद्योग जो बाबा कुट्टी से मैसेज भेजने विजय कुमार वर्मा जी कहने सबसे पहले मियाँ जी नमस्कार, तो नमस्कार है कहने आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपके कार्यक्रम के जितना भी तारीफ बढ़ाई किया जाए उतने कम है, धन्यवाद है आपका विजय जी कहने हमका विजय वर्मा कहके चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का कोई प्यारा से कवाली सुना दिया जी। जितने हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, मिस्त्री वगैरह हैं, घर परिवार के जितने हैं सब लोगन का साथी संगी का सबका सुनाओ चाहते हैं। ऐसे दूसरा मैसेज है, मैसेज भेजे वाले साथी हैं लेकिन सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम ये मैसेज भेजिन है जो इनके ठिकाना है सुरेश सोनी जो ये खजुरा धनौली चौकी से लोकटनी वाले लिखने के आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपके कार्यक्रम के जितना भी तारीफ किया जाए मियाँ साहेब बहुत अच्छा है, आपके कार्यक्रम के कोई बातें ना करा जाए जितना अच्छा लागत है, धन्यवाद है कहने का सुरेश कहके चिन्हे जाने वाले सब लोगन का कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी। तो साथ ही आप लोग भी नंबर में जुड़ा जाए सुनने के 84-15-122 के लाइन में आवा जी। नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में आवाज जी। पहला नंबर में है आप लोग एकदम सुना जाए, पहला नंबर में है उस राजा की अनोखी रानी दुमके रस्ते पीती पानी एक नंबर में है का होए ऐसे लालटेन पंखे में, लालटेन पंखे में उड़े अंधेरी रात में जलती बाती बिना तेल के जाड़ा हुआ जाड़ा हो या बरसात में। हाँ तो साथी आप लोग दोनों का उत्तर दिया जी। हम चली थे फिर छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद में सुना जी फिर प्यारा से कव्वाली।
1: कर्मचारी आवश्यकता बारे सूचना इस बहुद्देशीय कृषि कंपनी केही कर्मचारी आवश्यक परेकाले तलको ठेगानामा संपर्क राख्नु होला। तपसिल पद सामाजिक परिचालक आवश्यक संख्या 10 जना, बाँके 3 जना, बर्दिया 3 जना, दाङ 2 जना, कपिलवस्तु 2 जना र रूपन्देही 2 जना। पद कम्प्युटर अपरेटर 1 जना। कम्प्युटरमा दक्ष वा डिप्लोमा गरेको, काम गर्ने स्थान बाँके र बर्दियाका सबै पालिकाहरू, आवश्यक योग्यता प्लस टू पास भई सवारी साधन चलाउन जान्ने तलब कामको आधारमा हुनेछ। फिल्डमा गर्नुपर्ने कार्य व्यवसायिक किसान समूह निर्माण गर्नुपर्ने 6 देखि 12 महिनासम्म। त्यसपछि कम्पनीले अन्य पदमा कामको मूल्याङ्कन गरी बढुवा गर्नेछ। सोही बमोजिम तलब भत्ता पनि थप वृद्धि हुनेछ। किसान समूह निर्माण भएपछि सामूहिक कृषि व्यवसायको लागि डाटा संकलन फारम भरी कम्पनीलाई बुझाउनु पर्नेछ। सम्पर्क ग्रीन रोज बहुद्देशीय व्यवसायिक कृषि फर्म प्राली नेपालगञ्ज बाँके। मोबाइल नम्बर 97 63 98 18 45।

आपके सामने हजरत वहाब की शहादत पेश कर रहा हूँ, किस तरह से आपकी शहादत हुई। अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। समाप्त फरमाएं।

0: हाँ तो सुरताई कवाली सुनागा, खैर कवाली बहुत अच्छा रहा है, तो आप लोग भी एकदम नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415 के लाइन में आवाज आई कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाल पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है आप के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 मेगाहर्ट्ज़ से। कोई साथी फोन लाइन में है? हेलो नमस्कार,
1: मुन्ना सलमानी बोली से खुशी से।
0: मुन्ना सलमानी जी
1: हाँ, कातिल के पिक्चर के जो कवाली सुना दो।
0: हाँ?
1: कातिल पिक्चर के कवाली के गाने सुना दो, वो कवाली
0: कातिलो कातिल के पिक्चर के।
1: हाँ कवाली,
0: कौन कवाली?
1: अरे नाम ना याद है, वो कातिलो कातिल के पिक्चर में है कवाली।
0: अच्छा ठीक है, कोशिश करबे ना।
1: ठीक है सुना दो
0: कातिलो कातिल के कवाली फिल्म हो आए।
1: हाँ पिक्चर में है।
0: ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ साथी मुन्ना सलमानी रहा है, कातिलो कातिल के फिल्म के कव्वाली कहने सुना दिया जाए। ठीक है कोशिश करबे, सगर मिल गया तो हम कव्वाली जरूर सुनेबे। तो इससे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुना के 84151 के लाइन में आ जाए कैसे ही कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है आप के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 मेगाहर्ट्ज़ से। हमारे स्टूडियो के घड़ी में 1:38 हो चुका है साथी, आप लोग भी अभी टाइम बहुत ज़्यादा बाकी है, देर ना लगाओ जाए, फटाफट नंबर में जुड़ा जाए सुने के 84151 के लाइन में आए के कार्यक्रम के यहाँ वो किया जाए। तो इसे हमारे मुबारक जी जो सऊदी से मैसेज भेजी नहीं लिखी नहीं, सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम, कहने की कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जाए। ठीक है हम आपका कव्वाली प्यारे से कव्वाली सुनेबे, कहने हमका मुबारक खां कह के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहते। नेपाल के ठिकाना है हमार खजुरा गांव पालिका, गांव पालिका में जो रजनवा घर है, मगर आजकल हम विदेश में हन, तो अपने घर परिवार का अपने अब्बा महमूद खां, लड़का हसनैन खां के यहाँ घर परिवार का सब लोगन का और कहने कि चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहिए। ऐसे सत्यनारायण जयसवाल जो ही रामनगरा शांति टोल गुलरिया बर्दिया 12 से मैसेज भेजी ने कहने कि मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है इन्हों, कहने कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी। कव्वाली सुने वाले साथी हैं हमका सत्यनारायण जयसवाल जैसे कह के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहिए। ऐसे राजापुर से जो ही राजा राम थारू जो ही मैसेज भेजी ने राजापुर से, राजापुर बर्दिया से लिखने कि मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, भट्टा में काम करा जाता है तो आपके कार्यक्रम बहुत सुना जा रहा है। ठीक है आप कार्यक्रम सुना जाए राजा राम जी, तो कहने कि कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी राजा राम जी। आज गाना नहीं है, आज कव्वाली नात वगैरह है, आप नात कव्वाली लिख के पठवा जाए, हम आपके नात कव्वाली सकबर कोशिश करबे। तो कहने हमका राजा राम थारू कह के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहिए थे। इससे लालपुर बर्दिया जो लालपुर बर्दिया से जो मैसेज भेजी है सूरज लाल जी ये लिखने कि सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है कहने कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, कार्यक्रम में कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी, हमका सूरज लाल कह के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहिए है। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजी है ये जो मैसेज भेजी है ज्वाला प्रसाद खटिक जोई, मैसेज भेजी है ज्वाला प्रसाद खटिक जोई

0: नान बाबू पहुना पान भंडार जो खजुरा बाजार से जो पेट्रोल पंप के ठीक सामने से कहने कैप्सिक बजे वाला कोई भी गाना सुना दिया जी। साथी हैं इनके जैसे विनोद हैं, विनय हैं, राजा बाबू हैं, काजल हैं और तमाम घर परिवार का सुनाव चाहिए और चिन्हे जाने वाले सब लोगों का धन्यवाद है आपका नान बाबू पहुना पान जी पान भंडार से। ऐसे बिंदुसरी ठाकुर जो नीतू हेयर कटिंग सैलून से जो मैसेज भेजिन है खजुरे से, इन्हों कहने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है कहीं कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी। गाना सुनने वाले हैं बिंदुसरी ठाकुर के चिन्हे जाने वाले हैं शंकर मुरारी किशोरी और तमाम साथी लोगन का सुनाव चाहिए। भोला गौड़ी मारा वाले विशेष के दिलीप ठाकुर का सुनाव चाहिए। तो साथी अब हम चले थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद माँ सुना जी आप लोग प्यारा से कव्वाली। तो अब चले थे हम पहले व्यापारी विज्ञापन तरफ, तो सुना जाए पहले व्यापारी विज्ञापन के बाद माँ प्यारा से सुना जी कव्वाली।
1: रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंसले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि। घर रंगाओ खुशी बढाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
1: बर्जर पेंस।
3: बीर डेंटल
4: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामी छाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
5: डाक्टर लामी छाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
4: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
5: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ एनएमसी 19393 बीडीएस दिल्ली एफएजीसी मणिपाल सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक साउथ कोरिया यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
4: विशेषताहरू दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
6: सम्पर्क गणपति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगंज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
7: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
8: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हरेक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी सीआईसी आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
7: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
8: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे, दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेग्रा आर्मी ब्यारे के सामने राप्ती रोड बाँके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98480 2697 98583 2697

0: और 98014-83-697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: भटकते देखे हैं लाखों मुल्ला

हाँ तो श्रोताई प्यारा से कवाली सुनागा। खैर कवाली बहुत अच्छा लागत तो आप लोगन के जो मैसेज हमारे हाथ में है मैसेज भेजे वाले हैं हमारे लाल सोनी जो जेसपुर वार्ड नंबर 4 शिव मंदिर चौराहा से मैसेज भेजी ने ये लिखी ने। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है कहने आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है। कोई अच्छा कवाली सुना दिया जी। ठीक है हम आपका अच्छा कवाली सुनेबे। कहने हमका अमर लाल के चिन्हे जाने ले साथी हैं रघुनाथपुर के अशोक सोनी कुड़वा के ओमकारना सोनी प्रेम लाल आरती पूजा ज्योति सीता गीता अंजनी तमाम साथी लोगन का सुनाव चाहिए। ऐसे बशीर शेख जो ही चौलिका चौक से जो ही पान वाले मैसेज भेजी नहीं हूँ। कहने मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम। कहने कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी। हाँ ठीक है हम आपका कव्वाली ज़रूर सुनेबे। कहने हमका बशीर के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाव चाहिए थे। धन्यवाद है। ऐसे दूसर मैसेज है मैसेज भेजे वाले साथी हैं ये मैसेज आवा है लिखे वाले साथी हैं कहने कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है। आपके कार्यक्रम की जितना भी तारीफ किया जाए उतने कम है। धन्यवाद है आपका। इनके ठिकाना पता ठिकाना है खजुरा गांव पालिका वार्ड नंबर 4 नहर खजुरा से मैसेज भेजे वाले हैं गुबरे प्रधान जी। कहने कि आपके बोली आपकी आवाज़ बहुत अच्छा लागत है मियाँ साहेब। और कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी। दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम जब तेरी याद आएगी रो रो मरेंगे हम। हाँ तो साथी गज़ल हो मगर आज गज़ल ना सुनाए पेबे आपका सोमवार की गज़ल सुनेबे। या तो इतवार के आपका हमरे जो चंदा जी के कार्यक्रम चला थे उमा सुनाए दे। दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम मगर आज तो कवाली नात वगैरह के रह पाला। तो कहने हमका गोबरे कहके चिन्हे जाने गोबरे वर्मा कहके चिन्हे जाने ले सब साथी लोगन का सुनाव चाहते। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुनाए के 8415 के लाइन आवाजे नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 9007081415 के लाइन माओ जी। कार्यक्रम जो आपे के प्रिय रेडियो कृष्ण सार FM 94 मेगा हर से चलत है ये वार्ड नंबर 12 बिलासपुर नेपालगंज बाके से ही पूरे विश्व में कार्यक्रम का सुना भी जाते है देखा भी जाते है। आप कृष्ण सार FM सर्च किया जाए फेसबुक में जाओ जी हम लोगन का बोलत बतवात फिल्म के जैसे आप लोग पाओ जी। रेडियो में ऑडियो आवाज़ वीडियो देखे का तो फेसबुक में जाओ जाए कृष्ण सार FM लिखा जाए आपका हमारे पूरे स्टाफ के जितने माँ कार्यकर्ता लोग हैं सब आप लोगन का ज़रूर मिली हैं। तो इसे पहला नंबर माँ है उस राजा की अनोखी रानी दुमके रास्ते पीती पानी। एक नंबर माँ है दो नंबर माँ है लालटेन पंखे में उड़े अंधेरी रात में जलती बाती बिन तेल के जाड़ा हो या बरसात में। हाँ तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जी। उत्तर दे वाले साथी का तो हम पुरस्कार जरूर देवे। ऐसे जानकी गांव पालिका 3 बंजारे गांव से मैसेज भेजिन है पुजारी वर्मा टेंट वाले इन्हों लिखिन है। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है कहने अपसिक बजे वाला कोई भी प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी। हमका पुजारी वर्मा कहके चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का घर परिवार का चिन्हे जाने वाले विशेष कहके हजरत अली खां के यहाँ शेख का सुनाव चाहिन है। ऐसे दूसर मैसेज है मैसेज भेजे वाले साथी हैं ये मैसेज आवा है मैसेज भेजे वाले साथी हैं लेकिन कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है। ही होम राज वर्मा जो ही खजुरा गांव पालिका जानकी गांव पालिका गुरुआ गांव से जो ही होम राज वर्मा जी मैसेज पठाने इन्हों कहने प्यारा से कोई गाना सुना दिया जी मियाँ साहब आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है। धन्यवाद है। ऐसे दूसर मैसेज है मैसेज भेजे वाले साथी हैं ये लिखने कि आपकी बोली आपकी आवाज़ आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है मियाँ जी। बसंत कुमार गड़रिया ये खजुरा गांव पालिका खजुरा गांव से पठैन है कहने मियाँ जी आपके बोली आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागा था। तो साथी आपका अच्छा लगा आप मैसेज में आप पठौते रह जी कार्यक्रम सुनते रह जी। अब हम चले थे पहले 2 बजे के टेम चेक के बाद में व्यापारी विज्ञापन के बाद में सुना जी कव्वाली के बाद में हम आप फिर मिला जी नंबर में जुड़ते रहा जी। कैसे कार्यक्रम सब आपे लोग के रहो रेडियो से दूर ना जाओ जी।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जतिको तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: सस्तोमा हाई क्वालिटीका सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगञ्ज।
1: हरेक सामानको खरिदमा 1,000 देखि 20,000 सम्म छुट, 10 देखि 15 वर्ष सम्मको वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि।
2: अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
0: स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अगाडि।
1: सम्पर्क 97051148 70।
0: सोफा हब नेपालगञ्ज,
1: विश्वासमा नम्बर 1,
0: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट।
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताई दो हमका।
4: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जात है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
3: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
4: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
5: नींद ना आए हमको, हाय जग सोता है।
3: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
6: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए, हुआ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होत है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
3: सही, हुआ का सेवा मिलत है तो भैया।
6: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है, और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
7: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहदिल हुआ जाए।
6: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन, उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ, संपर्क नंबर 97541 11786 98224 92377।
8: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक, मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
3: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
6: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ हैं, तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नाक, कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
6: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
3: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
6: संपर्क नंबर 081536465 98249 80665 और 98482 80465।

0: हाँ तो श्रोता, छोटा सा व्यापारी विज्ञापन प्यारा से कव्वाली सुनागा। आप लोगों का फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। यहाँ तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए 081415 1122 के लिए, नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81415-1122 के लाइन में आवाज आई। कार्यक्रम जो आप लोगों के घर अंगना, दुकान मकान, खेत खरियान, डाड़ पहाड़, देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है। आप के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 MHz से चलत है। तो साथी जी, मैं आप लोगों का क्वेश्चन के उत्तर देख पर ही उत्तर दिया जाए तो सही उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार भी दिया जाए। तो जैसे उस राजा की अनोखी रानी दुमके रास्ते पीती पानी, एक नंबर में है, दो नंबर में है, लाल टेन पंखे में उड़े अंधेरी रात, जलती बाती बिना तेल के जाड़ा हो या बरसात। हाँ तो साथी, दोनों का सही उत्तर दिया जाए, एकदम उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जाए। टी शर्ट कहाँ से दिया जाए आप लोगों का भी बताया जाता है। आप लोग जान जाओ जाए कि जाना माना हुआ टेलर ज्योति टेलर है सदा लाइन में, जहाँ सब मेरे के कपड़ा सेते हैं वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जाए। तो नंबर में जुड़ा जाए 081415-1122 के लाइन में आवाज आई। कार्यक्रम जो आपके प्रिय रेडियो कृष्ण सार FM नेपालगंज 12 बिलासपुर से ही कार्यक्रम प्रसार होता है कृष्ण सार FM 94 MHz से। तो साथी कार्यक्रम में यहाँ आप लोग एकदम दिल से फ़ोन लगावा जाए, आपकी एक बार कामयाबी ज़रूर हुई तो इससे आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए। ऐसे जो माधवराम यादव जो मैसेज भेजे ना है लिखे ना, सबसे पहले मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, ये कहना है कि हमका कोई प्यारा से कव्वाली सुनाए दिया जी, अकल घरवा बाके से। इनके साथी हैं कृष्णा हैं, मीना हैं, हाँ जो अल्लाह है, तमाम साथी लोगन का सुनाओ चाहिए हैं। ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए 081415-1122 के लाइन में आप लोग एकदम तैयारी के क्या हो जाए, कार्यक्रम के जो सवाल है उसके उत्तर दिया जाए। उत्तर दे वाले साथी का तो हम पुरस्कार ज़रूर देवे। तो ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए 081415-1122 के लाइन में। अपने नेपाल के साथी आओ जी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81415-1122 के लाइन में आप लोग आवाज है। तो ऐसे आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए तो ले हम चले थे छोटा सा व्यापारी विज्ञापन। विज्ञापन जो छोटा कोई साथी हमरे फिर मैसेज पठा चुके हैं साथी हमरे, कहने की मियाँ जी आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है। इनके पता ठिकाना है जानकी गांव पालिका खजुरा से मैसेज भेजी है, नहर खजुरा से दल सिंगार जी, कहने दल सिंगार यादव जी कहने कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा है, कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी। कोई साथी हमारे फोन लाइन में है, पहले उनका स्वागत के लिए नमस्कार।
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार,
0: आपके नाम?
1: राम किशन ललई बुरवा से।
0: राम किशन जी, और
1: सब बढ़िया है?
0: ना बढ़िया हो चाहिए ना। हाँ, कार्यक्रम शुरू से सुना जाता है?
1: पहले वाला ना समर्पण करके बताया हो?
0: हाँ,
1: पहले वाला।
0: उस राजा के नोखी रानी दुमके रास्ते पीती पानी, एक नंबर में है, दो नंबर में लाल टेन पंखे में उड़े अंधेरी रात, जलती बाती बिन तेल के जाड़ा हो या बरसात। ये रहे राम किशन यादव जी, वो बड़े ही डलई पुरवा से। तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए 081415-1122 के लाइन में आप लोग एकदम आवा जाए। ऐसे हंसराम साहू जो मैसेज भेजे नहाए भुजई गांव से, कोई साथी हमारे फोन लाइन में है, देखी को कहाँ से नमस्कार।
1: हेलो,
0: हाँ
1: अरे कटी गा रहा है कसके फोन दूसरे का कटी गा रहा है।
0: अच्छा तो बताओ जाए,
1: पहले वाला है लालटेन?
0: हाँ,
1: और दूसरा है वो जुगनू।
0: ठीक है, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी रहे राम किशन बड़े ही जो डलई पुरवा से। तो साथी इसे सुने के 081415-1122 के लाइन में एकदम जुड़ा जाए, कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना, दुकान मकान, खेत खरियान, डाड़ पहाड़, देश विदेश यानी हर जगह पर ये कार्यक्रम चलत है। आपके ऑडियो वीडियो दोनों सुना देखा जाता है। तो साथी इसे आप लोग भी नंबर में आवा जाए और नंबर में आए के अपने कार्यक्रम के शोभा बनाया जाए यानी सवाल के जवाब दिया जाए, आप पुरस्कार भी पावा जाए। तो ये कार्यक्रम के हमरे जो टाइम है साथी 1 बजे से 3 बजे तक रहा है कार्यक्रम, अवधि कार्यक्रम तो ये अब 7 दिन के कार्यक्रम है। यानी पूरा कार्यक्रम पैक है। जैसे आज बीफ है कि 1 बजे से 3 बजे तक मियाँ जी के साथ में कार्यक्रम सुना जाता है, जिमा कव्वाली और क्वेश्चन के साथ है। ऐसे काल शुक्रवार के तो विदा है और शनिवार के संध्या और चंदा जी जो कार्यक्रम महिला के ऊपर के लेके आते हैं घरे से कोई विषय वस्तु, इतवार के कार्यक्रम भावना के साथ माँ चंदा जी चलावते हैं और सोमवार के कार्यक्रम मियाँ जी फिर चलावते हैं, बुध के चंदा जी पीफे के मियाँ जी, ऐसे यानी कार्यक्रम सातों दिन के पैक कार्यक्रम है। साथ ही अब कार्यक्रम खाली नहीं है, आप लोग सुनते रह जी, बराबर साथ देते रह जी, फ़ोन वगैरह करते रह जी, तब आपका जानकारी मिली पता मिली। तो इससे हमरे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजी है ये नेपालगंज वार्ड नंबर 3 अकलैनी बाजार से मैसेज भेजी है हमरे बहुत एकदम नेमी साथी हैं चांदनी दर्जी जी। इन्हों कहने की मियाँ साहेब अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम, कहने कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी, हमका चांदनी कहके चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहते है। ऐसे बद्री प्रसाद तेली यानी तमोली जो ये नेपालगंज बाके से मैसेज भेजी ना है, इन्हों कहना कि मियाँ जी कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी, कव्वाली सुने वाले साथी लोगन का हम अंका चिन्हे जाने वाले सब लोगन का सुनाओ चाहते। तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ते रह जी, तो ले सुना जाए छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद में सुना जाए प्यारा से कव्वाली।
2: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो, सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
3: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
2: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
3: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
4: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
2: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
3: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
4: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 98 61 14 16 99।
5: हाय, के गर्ने होला अब, सुगर पनि बढ्दैछ, थाइरोइडको समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
6: ए तिमी यति चिन्तित किन, के भयो फेरि?
5: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
6: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
5: कस्तो खबर?
6: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
5: ए साँच्चै?
6: अझै सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
5: ए त्यो त झन् राम्रो
6: हो नि। डाक्टर पुनम आचार्य एमबिबिएस, एमडी केयु, आइभीएफ स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सुरज राज भट्टराई एमबिबिएस, एमएस केयु, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
5: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
6: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्, दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, इसिजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
5: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
6: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
5: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बिपी चोक नेपालगंज, फोन नम्बर 081-531-860 र 081-531-861।
6: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
7: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
8: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840821380।
9: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
10: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदै छ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
9: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
10: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै NICU, PICU, ICU, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
9: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
10: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
9: सम्पर्क नम्बर 081535717।
11: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
12: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। यतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड ब्रामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। BTE, CIC, RIC जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
11: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
12: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगञ्ज फुलटेग्रा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके, संचालक पूरन चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9848020697, 9858023697 और 9814083697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: रंग आउँदै देश मेरो एभरेस्ट
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्ते।

हाँ तो श्रोता, अब का किया जाए, कार्यक्रम के समय भी धीरे धीरे बराए लाग है एकदम कार्यक्रम के अंत अंत महान। तो इसे हमरे स्टूडियो के घड़ी में 2:47 हो चुका है। तो साथी इसे आप लोग नंबर में आ जाए 0815 के लाइन में आ जाए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 0079701415 के लाइन में आवा जाए। कार्यक्रम जो आप लोग सुना जाता है आप ही के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 MHz से जो चलत है कार्यक्रम चनाजोर गरम, जिका आप लोग का पुरस्कार भी है। जैसे आप लोग क्वेश्चन के उत्तर दिया जाए, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार जरूर मिली। तो इसे पहला नंबर में है क्वेश्चन, उस राजा की अनोखी रानी दुमके रास्ते पीती पानी, एक नंबर में है। दो नंबर में है लाल तेन पंखे में उड़े अंधेरी रात।

0: रात में जलती बाती बिना तेल के, जाड़ा हो या बरसात में। हाँ तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जी, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। कहाँ से दिया जाए तो आप लोग का उनका पता बताई थे, जैसे माना जाना हुआ ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 में है, वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जाए। जहाँ सब मेर के कपड़ा लेडीज जेंट्स हड्डा पीस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट सब मेर के कपड़ा सेहत है वहाँ से। हाँ तो इसे साथी आप लोग जो इसे कार्यक्रम के यहाँ फ़ोन किया चाह जाते तो नंबर में जुड़ा जाए 081415122 के लाइन में एकदम जुड़ा जाए। कार्यक्रम जो आप लोगन के प्यारा कार्यक्रम है जिमें आपका फ़ोन करे परी तो इसे मैसेज पठे का है तो मैसेज भी पठा दिया जाए 98155936 में मैसेज भी भेजा जाए। तो इसे कार्यक्रम के जो हमरे मैसेज भेजी नहीं है मैसेज भेजे वाले हैं घनश्याम पाठक पिपराहवा बाके से ही लिखने की मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है इनके कार्यक्रम में यहाँ कहने के, हमारे कार्यक्रम से बहुत दिल लागत है, हम कार्यक्रम आपके बहुत प्यार प्रेम से सुनित है और हमका कोई प्यारा से भी कव्वाली सुना दिया जी, धन्यवाद है आपका घनश्याम जी, हम आपका कव्वाली ज़रूर सुनेबे। हाँ कहने की कव्वाली सुनने वाले साथी लोगन का सबका सुनाओ चाहिए थे, अपने प्यारी श्रीमती गायत्री देवी पाठक का भी सुनाओ चाहिए थे। ऐसे अब हम कार्यक्रम के एकदम अंत अंत में हैं तो साथी ऐसे आप लोग भी एकदम नंबर में जुड़ा जाए 081415122 के लाइन में आवा जाए। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजे वाले हैं दिल बहार खां जी जो बठवा 4 बाके से ही लिखने की मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम, कहने कि अब हम कार्यक्रम आपके बहुत प्यार प्रेम से सुनित है। हाँ तो साथी अब हम आप लोगन से यही कहते कि अब हम चली थे पहले प्यारा से कव्वाली तरफ, कव्वाली के बाद में हम आप विदा लेके समय आएगा है फिर सुना जाए प्यारा से कव्वाली के बाद में हम विदा ली थे।
1: भटकते देखे हैं लाखों मुल्ला

हाँ तो सर, तो आपका क्या जाए एकदम समय के अंत अंत महान। तो साथी आप लोग नंबर में सकबर कोशिश किया जाए, आए एक फोन ले मिली तो ले मिली ना। अब हमरे प्रादीप जी वो भी सारा दे चुके कि फोन भी मियाँ जी एकदम बंद। हाँ तो साथी आज के कार्यक्रम में फोन करे वाले साथी रहे हमरे मुन्ना जी, हमरे राम किशुन जी। तो आज के विजेता हमरे राम किशुन बड़े ही वे हैं डलई पुरवा बाके से। हाँ तो साथी एक हो लालटेन एक हो जुगनू बहुत से ही बताना है। राम किशुन जी आपका बहुत बहुत बधाई है, कार्यक्रम में आपका पुरस्कार टी शर्ट मिला है। तो साथी एक कार्यक्रम में यहाँ जो आप लोगों के यहाँ अपने मन पसंद के कार्यक्रम है, इमा जो आप लोग ज्ञान गुण दिमाग बुद्धि के काम है, एक दिमाग दौरा हो जाए कैसे इमा जो आपके नाम जाते हैं। आज हमरे राम किशुन के नाम पूरे विश्व में गवा, यानी रेडियो कहाँ तक सुनाई जाते है। अरे एक मिला बाजा लगा है तो उतरे 18 जने 20 जने 10 जने 5 जने 2 जने 4 जने, यानी कितने लाखों करोड़ों के काने में आवाज़ पहुँचा कि बाके जिला जो खजुरा गांव पालिका डलई पुरवा के आज विजेता कृष्ण सार FM 94 MHz के द्वारा से राम किशुन बड़े ही भय हैं। तो राम किशुन जी आपका बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी, ज्योति टेलर, जहाँ सब मेर के कपड़ा कुशल कारीगर द्वारा सिया बनाया जाता है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम का देश दुनिया में पठन ये प्रकाश के जैसे पूरे विश्व में प्रकाश यानी रोशनी फैला, इसे आवाज़ का पूरा ऑडियो वीडियो दोनों का पठन हमरे प्रावधिक में यहाँ जो पूरा 2 घंटा बैठ के साथ दें हमरे प्रावधिक जी चंदा, उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हन और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनका भी। और ये कार्यक्रम का जो हमरे तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थारू पहाड़ी सब कोई देश दुनिया अपन नेपाल भारत जहाँ के अन्य देश के लोग सुने, सब लोगन का तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देते प्यारा से कव्वाली के साथ में। हम परसोता संचालक नियाजी विदा ली थे, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, टाटा बाय बाय।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक
1: अहिले दिउँसोको 3 बजेको
2: छ। एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: రంగా ఉదయ్ దేశ్ మీరు ఎవరెస్ట్
1: बीर डेंटल बीर डेंटल बीर डेंटल
2: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
3: फोन नम्बर 081532375।
4: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज, डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
5: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में ही अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
4: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
5: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बाके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
6: नींद ना हमको है, जग
4: सोता है। बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुना।

0: क्लिनिक मर्द और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
1: Back to back, back to back.
2: In this song, on
1: stay tuned.

0: back to back, back to back.
1: In this song on
0: Stay Tuned.
2: अरे सर हर गाने का रिमिक्स कर देते हैं सर। सर हमारी जनरेशन को ये सब समझ नहीं आता, नहीं आ रहेगा कुछ बोलो यार, छोड़ो यार सर मेरे को
3: गाने का इक्वल वैल्यू है।
2: अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया गाना,
4: सर तू समझ नहीं रहा है, ये हिट गाना है तेरे को नहीं करना, तू मत कर, मैं जा रहा हूँ।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: समय बदलियो पुस्ता फेरियो तर साथ साथ उस्तै छ

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
0: बर्जर पेंसले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि
0: घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ बर्जर पेंसले

0: हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
1: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक सोल्टिमोट काठमाडौँ, फोन नम्बर 9861414900।
2: रंग बहार रंग बहार
3: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
2: बर्जर पेंट्स ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
3: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि।
4: घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
2: बर्जर पेंट्स।
5: यो कृष्णसार एफएम
6: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।

0: एक्सट्रीम
1: इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी